हे सच्चे पातशाह तुहाडे चरण च यही बेनती करदे हां, बस कृपालू हो के हमेशा लई इस मन नू अपने दर्शन देंदे रहो। चाओ बनिया रहे अनुभवता दी।

राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप है आठो नंदन प्रथम राग पहरव करही पंच राग नी संग उच रही प्रथम पहरवी।

0: वो एक बार वह समझेंगे कृष्ण रोए धुरा उनकी सभा मलेश की कपड़ा पासार का बाजी पे का अनेक रंग का उतार चतर चक्रवर्ती चतर चक्रभूते
1: हम भवसम सदा सजते दुकालम प्रणासी दयालम स्वरूपे सदा संगे अपंग विभूते
0: देख ते गुप्त निर्मे दृंग याप्त जनान गुरु गोविंद सिंह से काल की सहाय दरबार में तुम दरबार आ सचन संकारा लक्ष्मी तुम दरबार आ।

अकाल हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि अमंत्र हरि सो तेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपाद हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि अभरम हरि अकरम हरि अजय हरि अभय हरि अभेद हरि अछेद हरि अखंड हरि अभंड हरि अदंड।

कनू कगोट आग उठे न्यार न्यार हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कनू का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केते गछ मछ केते उन को करत भछ, केते अच वछ हो सपच उड़ जाएंगे। केते नब बीज अच पछ को करेंगे भज, के तक प्रताच हो बचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही जबाहेंगे। तेज जीव तेज में तेज जैसे तेज लीन, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कुकत फिरत केत रोवत मरत, केते जल में डुबत केते आग में जरत है। केते गंग वासी केते मदीना मक्का निवासी, के तक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत केते भूम में गड़त, केते सुअ पे चढ़त केते दुख को भरत है। गैन में उड़त केते जल में रहत, केते ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। शोध हारे देवता विरोध हारे, दानव बड़े बोध हारे, बोधक प्रबोध हारे, जापसी घास हारे, चंदन लगाए हारे, चुआचार पूज हारे, बाहन चढ़ाए हारे, लापसी गाह हारे, गोरन मनाए हारे, बड़ी मटलीप हारे, वीतन लगाए हारे, छापसी गाय हारे, गंधर्व बजाए हारे, किन्नर सब पच हारे, पंडित तप

नारायण नरंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभं भूतं भेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं अजोनीय छयाद अद्वयजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं भय निर्विखादं अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न दादंग न मादंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं।

कहूँ धर्म के कर्म के हरम जाने कहूँ धर्म के कर्म के भरम माने कहूँ चार चेष्टा कहूँ चित्र रूपं कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्वभूपं कहूँ नेह गृहं कहूँ देह दुखं कहूँ औखदि रोग के शोक सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैद बानी कहूँ जक्ष गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी साधके तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूमुखी भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जश विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट के पृष्ठ के ऋष पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारं कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ ज्येष्ठाचार चित्रं स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ पुराण के गीत गावे कहूँ शुद्ध शिखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राज साजं कहूँ राज रीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ आरबी तोर की पारसी हो कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश भाख्या कहूँ देव बानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारं कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारं कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूँ बीन विद्या कहूँ गान कीर्तन कहूँ मलेज भाख्या कहूँ वेद रीतं कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागवाणी कहूँ गारडू गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूँ वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूँ छैल छाला धरे छत्र धारी कहूँ राज

नहीं चिन्ह चित्र जह रंग रूप नहीं राग रेख जह जन्म जात नहीं भरम भेख जह करम भरम नहीं जात बात नहीं नेह केह नहीं पितृ मात जह नाम थाम नहीं वर्ग ब्याद जह रोग शोक नहीं शत्रु साध जह द्रास वास नहीं देह नास जह आद अंत नहीं रूप रास जह रोग शोक नहीं जोग जुवत जह त्रास आस नहीं भूम भुगत जह काल व्याल कट्यो नांग अक्षय स्वरूप अक्षय अभंग जह नेत नेत उचरंत वेद जह अलख रूप कथत कतेव जह अलख रूप आसन अडोल जे अमित तेज अक्षय अतोल जह ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन शीत खाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन वितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई ऊर्ध बाह देशन भ्रमंत कई ऊर्ध मध पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्र दुचरंत वेद कई गोक काव कथत कतेव कई अग्न होत्र कई पवन हार कई कर्त कूट मृत गो

ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद चार कहूँ करद जच गंधर्व गान कहूँ रूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृकर्म कहूँ वेद रीत कहूँ नृत नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत सास सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देश अनुदास कई जल निवास कई यगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्प अंग्र जानत नहीं तदव दास पायत न अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदव दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु करत हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित्त लीन फोकटो।

जेहे खेद न भेद न छेद छयंग जेहे जात न पात न मात पितंग जेहे रचयंग छत्री छत्र छितंग जेहे राग न रेख न रोग भणंग जेहे द्वैख न दाग न दोख गणंग जेहे अंड है ते ब्रह्मंड रचियो तस चार करी नवखंड सचियो रज तामस तेज या तेज कियो अनुभव बद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद नगंग श्रेय जच गंधर्व फणिंद भुजंग रच देव अदेव अभिव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उत भुजंग किये देव देव सराद पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभु जात न पात न ज्योत जुतंग जेहे तात न मात न भरात सुतंग जेहे रोग न सोग न भोग भुअंग जेहे जंपय किन्नर जछ जुअंग नर नार नपुंसक जाहे किए गण किन्नर जाछ भुजंग दिए गज बाजर थातक पांत गणंग भूत भविख भवान दुअंग जेहे अंडज सेतज जेर रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भू मेर आकाश निवास छितंग रज रोज एकादेश चंद्र वृतंग दुद चंद दिनी सह दीप दई जेहे पावक पवन प्रचंड मई।

नरेख रुगंग जे सोग न भोग न जोग जुगंग भुव वंजन गंजन आद से रंग जे बंदत देवा देव नरंग गण किन्नर जाच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रवान गंज प्रतंग जे पार न पावत पूर्म तंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जम पद।

भंज जानिए। भूत भूत है सदा गंज गंज मानिए। अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है। समस्त सिद्ध वृद्ध दास देव सर्व साथ है। अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है। सदीव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिए। सदीव सिद्ध सुध दा प्रताप पत्र जानिए। नराग रंग रूप है नरोग राग रेख है। अधोग ताग तक है अभूत ब्रह्म भेक है। न दात मात जात है न पाद चिहन वरण है। अदेग सेग भेक है सदीव विश्व भरण है। विश्वंबर विश्वनाथ है विशेष विश्व भरण है। जिमी जमान के विखे सदीव करम भरम है। अद्वैक है अभेक है अलेख नाथ जानिए। सदीव सर्व ठौर में विशेख आन मानिए। न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई। पुराण अपुराण नेत नेत के बतावई। न करम में न धर्म में न भरम में बताइए। गंज याद देव है कहो सो कैसे पाइये। जिमी जमान के विखे समस्त एक ज्योत है। न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है। न हान है न बान है समान रूप जानिए। मकीन ओ मकान अप्रमान तेज मानिए। न देह है न गे है न जात है न पात है। न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है। न अंग है न रंग है न संग है न साथ है। न दोख है न दाग है न द्वैग है न देह है। न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है। न मान है न मौत है न साक है न संग है। न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है। न चोर है न साव है न साह को कुमार है। न नेह है न गे है न देह को बनाओ है। न छल है न छिद्र है न

पाल है ख्याल है खंड है न रोग है न शोक है न भेद है न भंड है न अंग है न रंग है न संग है न साथ है प्रया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है न शीत है न सोच है न घाम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र के विभूत है।

अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत अभेक है बलिय रूप राग रंग है न द्वैग है न भेक है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिहन वर्ण है बेअंत है अनंत अनंत तेज जानिए अभूम अभेज है सदा छे

लाओ है, न जंत्र है, न तंत्र है, न मंत्र को लाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है, अनंग है, अगंज से विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ मोहकार है, न आद है, न गाद है, न

दुष्ट गंजन शत्रु भंजन परम पुरख ब्रह्माथ दुष्ट हर्ता सृष्ट कर्ता जगत मय जह गाथ भूत भव भविख भवान प्रमाण देव गंज आद अंत अनाथ श्रीपद परम पुरख अभंज धर्म के अनकरम जेत कीन तौन पसार देव देव गंधर्व किन्नर।

अघौ दंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल दुष्ट हरनंग पुष्ट करनंग सर्व के व्रतपाल सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भोगता सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्ट हर्ता विश्व भर्ता आदि रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देव खंड भूम का जले थले महे जपत जाप मंड सृष्ट चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देव पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव ना पावई शिव रुद्र ओमुख चार कोट इंद्र उपेंद्र व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय थके सब

कहाँ रंग राजा कवन हरग शोक है कवन को रोगी रागी कवन कहो तत् मुह तवन दोहरा कवन दृष्ट को पुष्ट है कहाँ सृष्ट को विचार कवन सृष्ट को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा।

को सूरा सुंदर कवन कहा जो को सार, को दाता ज्ञानी कवन कहो विचार विचार। त्व प्रसाद दीर्घ त्रिभंगी छंद, दुर्जंदल दंडन असुर विहंडन, दुष्ट निकंदन आदपते, चरा सुर मारण, पति उदारण, नरक निवारण, गूढ़ गते, अच्छे अखंडे, तेज प्रचंडे, खंडे उदंडे, अलख मते। जय जय हो सेम खासुर मर्दन, रम्मक बर्दन, छत्र छिते, आसुरी विहंडन, दुष्ट निकंदन, पुष्ट उदंडन, रूप ते, चंडा सुर चंडन, मुंड विहंडन, धूम्र विधुंसन, महक मथे, दान प्रहारण, नर्क निवारण, अधम उधारण, उर्ध अधे। जय जय हो सेम खासुर मर्दन, रम्मक बर्दन, आदभृते,

कारण बाघ बकारण सहसारण साधम ते सहती सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निबाहन तेज तलन जय जय हो सीमा खासुर मर्दन भूमा काश पताल जलन चाचर चमकारण चुरहारण धूम धुमकारण द्रप मथे धाड़ी प्रतंते जोग जयंते मनुज मत

सुर नर मुन बंधन दुष्ट निकंदन भेष विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अधम धारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुन नर मोहन सिंहारोहण वितल तले जय जय हो से सब ठार निवासन बाय बताल आकाशन ले संकटे निवारण धम धारण तेज प्रकर खण तुंद तबे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाद अछे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय होसी शास्त्र प्रकरखण आद अनिल अगाद अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नर्क निवारे अधम धारे तूर भुजे दामनी दमंके के हर लंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय होसी रक्ता सुर खंडन सुंभ चक्रत निसुंभ मथे बारज विलोचन प्रतन विमोचन सोच विसोचन कौज कसे दामनी प्रहासे शुभ सरनासे शुभ्र सुभासे दुष्ट ग्रसे चंचला प्रांगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय होसी मैखा सुर मर्दन आद अनाद अगाद ऊर्धंग घंट का विराजे रुण झुण भाजे ब्रह्म भाजे सुनत सुरंग उसको किल सुन लाजे किल विग भाजे सुख उपराजे मध उरंग दुर्जन दल तज्जे मंतन रिज्जे सब न भज्जे रूह रणंग जय जय होसी मैखा सुर मर्दन चंड चक्रतन आद गुरंग चाचरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर विते दुमराज विदुंसन प्रलय प्रजुन संजय।

खतरियान खतंगिया भय भंगी आद अनंगिया गाद गते ब्रड लाज पे हंडन च छुर दंडन तेज प्रचंडन आद ब्रते सुर नर प्रत पारण पत दो धारण।

डुक डुके दमंके बाघ भवंके भुजा फरंके शुद्ध गते जय जय हो से माखा सुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक बटे पापान बिहंडन दोच प्रचंडन खंड।

आनंद जहे नेत नेत निस दिन उचरंत त्वा प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल कर नित संत उबारक नी मन गारे बच्छ पशु नग नाग नराधे सर्व समय सब को प्रतपार पोखत है जल मै थल मै पल मै कल के नहीं कर्म बिचारे दीन दयाल दया नित दोखन देखत है पर देत नहार दाहत है दुख दोखन को दल दुजन के बल मै दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारन पूर्ण प्रेम के प्रीत संभार पार न पाय सके पद मापद भेद कते भेद उचारे रोज ही राज विलोकत राजक रोग रुहान की रोज नटार कीट पतंग कुरंग भुजंग भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे अहंग बेवना भेव रखियो भ्रम से भरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यो किन श्री पद मापत पाए आद अनंत अगाध द्वेख सो भूत भविख भवान अभय अंत विहीन अनाथ माव दाग दुख छिद्र छह लोगन के करता हरता जल मै थल मै फरता प्रभ है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापत ये है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह बीन स्नेह सभोतन नेह विरक्त अगेह अच्छा है जान को दे दे अजान को दे दे जमीन को दे दे जमान को दे है काहे को डोलत है तुमरे सुत सुंदर श्री पद मा

बनो कर दया कर पाप संभूहन भेटन पावे। और की बात कहा कह दो सौ सौ पेट ही के पट बीज बचावे। सब ही कर ध्यावे। भूमा आकाश पताल रसातल जच भुजंग सब सिर न्यावे। पाय सके नहीं पार प्रभाहु को नेत ही नेत भेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हूँ मिल गायो। वेद कतेव न भेद लखयो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनाद सनंतन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन मै जह को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद नृपान सब पचहारे। वेद न पाय सके अन भेद को खेद तह अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साग न सोग न संग तिहारे। आद अनाद अगाद अवेख अदवेख जप्यो तिन ही गुलतारे। तीर्थ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश फिरे कर भेष तपोधन केस धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे मुख कारे। दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया क्षेत्र छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया महा सत्रन के साल हैं। दान के देवैया महामान के बढ़ैया वसान के देवैया हैं कटैया जम जाल हैं। युद्ध के जितैया और विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान हैं। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल हैं। पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमाल ध्याव गोर गर देज गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पौन साधना के तेग बांधे अरब के अरबी अराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी गुरे से जाने पश्चिम के पश्चिमी पछान निज काम है। मरहटा मंगेल तेरे मन सो तपस्या करे दृढ़ वह तिरंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आगे मैं चलत है। रोह के रोहले माग देश के मंगेले बीर बंग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुण गावे जिन मचीन के शीश ने आवे देव दिधे आए दुख देह के दलत है। जिन दोहे ध्यायो तिन पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल से फलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साध दीन कहियत है। पाइय न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार पल पाछे पहुचत दाहे चिट्ठी की चिंगार पहले ही सुनियत है। केते इंद्र द्वार कते ब्रह्मा मुख चार कते कृष्णा अवतार कते राम कहियत है। केते ससरासी केते सूरज प्रकाशी केते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। केते महादीन केते व्यास प्रवीण केते कुमेर कुलीन केते जश कहियत है। करत है विचार पैना पूर्ण को पावे पार ताही ते अपार निराधार लहियत है। पूरा नवतार निराधार है न पारावार पाई है न पार पे अपार के बखानी है। अद्व अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी के मानी है। जंत्र हूँ न जात जाके बाप हूँ न माए ताकि पूर्ण प्रभा के सुछा के अन मानी है। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र के जानी है। तेज हूँ कता रह के राजसी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना किसान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनी मन को गारक है साधन को रचक है गुणन को उपहार है। सिद्ध को स्वरूप है।

काल हूं के काल हैं के सत्रन के साल हैं के मित्रन को बोगत हैं के वृद्धता की बासी हैं जो कहूं को जंत्र हैं के तेज हूं को तंत्र हैं के मोहनी को मंत्र हैं के पूर्ण प्रकाशी हैं रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूं को घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सार है ज्ञान को बचैया है मान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के श्रेहन नर है विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाई है न पार पार अवार हूं को बार जा को की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय गावे है बसी हल विधावे पूर्वी न पार पावे असत अनाश है देवन को देव महादेव हूं के देव है निरंजन अभेवनाथ अद्वै अविनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं को जोग है धरैया ध्रुव छाल के कामना के कार है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावत छाछ कैसी छत्रानेर छपाकार कैसी छप कालिंद्री के कूल के हंसनी से सिहारो महीरा सिंह सनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोलसी सुरंगाबाद नीके रही झूल के चंपासी चंदेरे कोट चांदनी सी चांदगढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी के लाज कमाऊ गढ़ कांसीपुर सी ससी सुरंगाबाद नीके सोहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलबा ने रहस कैसी हाजीपुर देख मोहियत है चंदन सी चंपावत चंद्रमा सी चंद्रगीर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग धार बकांसी बुलंदाबाद कीरत तिहारी की ओजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासीस के दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है भखरी गंधारी गोर कखरी गुरदेजा चारी पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्प ठौर में विराज जहाँ जहाँ जाइयत है पूर्ण प्रताप चंद्र मंत्र दया तापी नाथ कीरत।

गुरु गरीब निवास अंतर जान सचे पातशाह जी महाराज धन धन साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी आप जी के पावन स्थान सत्खंड दरबार दाजरी भरते हुए आप जी गिरवी पाणी का सत्कार करते हुए बेअंत प्रमुखा प्यारे माया हाजिर हुई है सचे पातशाह नाम नान सिखे दान की बख्शिश करने गुरसिखी जोड़ बख्शना दे आरोपता समूह संतान मनोकामना पूर्ण करने नाम माणी नाल प्यार उचना आदरे दर प्रवान करनी यात्रा सफली करनी।

मेरा प्राण सखाई हर कीर्त हमरी रहरा सुरहा हर जिन के बड भाग वडेरे जन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मला त्रपतास है मल संगत गुण प्रगास जन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए ध्रग जीवै ध्रग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन धर्मस्तक लखया लखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जिन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महल्ला पंजवा काहे रे मन चित वह उदम जा आहिर हर जियो परिया सैल पत्थर मह जंत उपाय ताका रजक आगे कर धरिया मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया गुर

किसकी धरिया, सिर सिर रिजक संबाहे, ठाकुर काहे मन भाव करिया, ऊडे ऊड आवे सैकूसा, तिस पाछे बछरी छरिया, तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया।

सदबल जाइय तेरा अंत ना पारावरिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राग आसा महला चौथा, सो पुरख इक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा। सब ध्यावहे सब ध्यावहे तुद जी, हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर ध्यावो संतो जी, सब दुख विसार नहारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घड़ घड़ अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। एक दाते एक भेखारी जी, सब तेरे चो जविडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर ध्यावह तुद जी, से जिन जुग मह सुख वासी। से मुकत भय जिन हर ध्याया जी, तिन टूटी जम की फासी। जन निर्भव जिन हर निर्भव ध्याया जी, तिन का भव सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर ध्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करे हर पूजा जी, तप तापह जपह बेंता। तेरे अनेक पड़े बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भावे मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जीव डियवर ना कोई। तू जग जग एको सदा सदा तू एको जी, तू नह चल करता सोई। तुद आपे भावे सोई वरते जी, तू आपे करह सोई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सृज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सहका जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैंडा साई। जो ता भावे सोई थीसी, जो तू दहे सोई हाँ पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी ध्याया, जिसनू कृपा करह तन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिंदु जा अवर ना कोए। तू कर कर वेखह जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड है भैले निवासा। पाणी पावक तिन है किया,
पंकज मोह पग नहीं चाल, हम देखा तहडू बियले, मन एक नचेत समूड मना, हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हाँ जती सती नहीं पड़िया।

है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दायत जच्छन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तसही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकण को सेव गुण सुख दियो सतरण को पल मोह पद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत छींटी ते कुंचरिय स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जावद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देहे अपारा जब आकर्ख करत हों कब हों तुम मैं मिलत दे धर सब हों जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत नरालम ज्ञानत बेद भेद अर आलम नरंकार निर्भकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ

ते बरंत भिन्न भिन्न तोहे तेति तुमरा लखा न जाए पसारा कह पिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्पज खान बहर रच दीनी कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सुमट भयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत तुतपाता सकल मलेच करो ऋण घाता जे असुज तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत होए मरे पुरख जवन पग परे तहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताके काल निकट नह है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध घर्मो सब होई दुष्ट छा छुए सकै न कोई एक बार जिन तो मैं संभारा काल फांसते ताहे उबार।

कह चौपई सम सत्रह सैस भणी जय अर्ध सैस भुन तीन कह जय भादव सुदी अष्टमी रवारा तीर सतद्रव ग्रंथ।

दास तिहारा, जान आप ना मुझे नवाज, आप करो हमरे सब काज, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब नवाजा, दास जान कर कृपा करो मोहे, हार परा मैं आन द्वार तोहे, अपना जान करो प्रतपारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा, दास

मैं जुत बिचारे देह अनत नानत रह जस नाव चढ़ भव सागर तारे धीरज धाम बनाए एह तन बुद्ध सो दीपक ज्यों जियारे ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ लै कातर ताक त्वार बुहारे दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाकत नेत सुर्ग बा सुरग बर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल होई आद ब्याज छै सकै न कोई सम सत्रह सैस पचावन हाड़ वदी प्रथम सुख दावन तौ प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परि लौ लेहो सुधारा दोहरा नेत्र तुम के चरण तर सत द्रव तीर तरंग श्री